हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसो। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज बुधवार का दिन है, 12 तारीख अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। 3 मिनट ओवर सोइफ। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए हॉलैंडियस के बीच में मिड नीदरलैंड में और साउथ प्रोविंस साउथ हॉलैंड में DAB प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटर कार में अपना घरों में ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। और रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सात बजकर प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। अभी आपने सुना सुबह सुबह लो शिव का नाम, हरिहरन के आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बुधवार का दिन है, 12 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज जबकि बुधवार का दिन है, 12 तारीख अगस्त, तो आज शाम में तकरीबन 6:15 बजे शुरू होगा सोन फॉर डॉस्टरिंग, हाँ सूर्य ग्रहण शुरू होगा। काफी लोग चश्मा खरीद चुके हैं, अपना प्रयोग खरीद चुके हैं देखने के लिए, लेकिन हम आपको ये राय देंगे अगर हो सके तो कोशिश कीजिए मत देखने के लिए, इसलिए कि आपकी आंख के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज शाम में 6:15 बजे सोन फटरिंग शुरू होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण। वैसे आज का दिन आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम सुनते हैं, हम देख रहे हैं ऑल इंडिया के बाहर देश विदेश में भी काफी सुनने वालों बस इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। हॉलैंड की सुनने वालों के साथ हमारे सुनने वालों जो आसपास की देशों में सुनते हैं, उन सभी को भी स्वागत किया जा रहा है। आप सभी को भी एक खूबसूरत और सुहाना दिन। सूर्य कोटि अमित सिंह की आवाज में एक सुंदर सा गणेश जी का भजन आज की निर्विघ्न।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। खासतौर पर अमित सिंह की आवाज में ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, अपना मोबाइल टेलीफोन, अपना मोबाइल फोन, टैबलेट पर आप जरूर जाइए, या तो कंप्यूटर पर रेडियो SBS का वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट पर रोजाना आपका दाख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र होता है, जरूर आप जाकर देखिए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl, और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, एक सुंदर सा राम जी का भजन अब की बार पेश किया जा रहा है विपिन सचदेवा की आवाज में, और भजन का बोल है मेरे मन में है राम। सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों।

0: रेडियो SBS की सरिये सुंदर सा भजन विपिन सच देव की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में जसपाल सिंह की आवाज में एक सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है आज के भजन यात्रा प्रोग्राम में। वैसे हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है होलैंड देश के बाहर देश विदेश से और गुड मॉर्निंग कहा है खुद मोर्ख कहा है सभी को शुभ सुबह शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले जसपाल सिंह की आवाज में ये सुंदर भजन
1: ओ

सूर्य ग्रहण देखने के लिए यानी कि सोंग फरदौस्त्रिंग देखने के लिए। बस हम आपसे यही कहेंगे, कोशिश कीजिए मत देखने के लिए, आपके आंख के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और जहां तक मालूम है कि काफी दुकानों में ये चश्मा जो है, ब्रेल जो है, बिक चुका है हेलमाल आउटफॉर को। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। चले आज के प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन प्रणोप की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुंदर सा श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि बृहस्पतिवार 3 तारीख सितंबर कृष्ण जन्माष्टमी है। 2 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार 3 तारीख सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। और साथ ही साथ आपको भी खबर किया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी सोमवार 14 तारीख सितंबर को है। लेकिन उससे पहले भी आपको खबर किया जा रहा है कि शुक्रवार 28 तारीख अगस्त फ्राइडे 28 अगस्त रक्षा बंधन का दिन है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और उसी टारगेट नंबर पर भी आप रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चलिए आज के प्रोग्राम में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है, एक भजन जो हमारे बहुत से सुनने वालों भी पसंद करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता,

सुंदर भजन पेश की गए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, एक भजन प्रोग्राम में पेश की गई जो हमारी बहुत सी सुनने वालों पसंद करते हैं। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। सुनने वालों, जिस तरह से मैंने अभी आपको खबर किया कि ये शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहन का दिन, तो आपको खबर किया जा रहा है मुस्कुराता दुकान जो देनहाग शहर के अंदर में है कि इनके पास राखी जो है 1 यूरो में आपको दिया जा रहा है, तो जरूर आप जाकर खरीदिए देनहाग शहर के अंदर में मुस्कुराता दुकान के पास जो कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर है, वहां पर आप जाकर राखी जो है एक से एक खूबसूरत राखी 1 यूरो में आप खरीद सकते हैं। अब की बार एक सुंदर सा गणेश जी का भजन प्रोग्राम में पेश किया जाएगी, जलीम की आवाज में आप सुनते ही रहना।

सलीम की आवाज में ये सुंदर गणेश जी का भजन अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उन सभी के लिए, उनके पूरा परिवार के लिए ये सुंदर भजन भी पेश किया जा रहा है। सुंदर सा गणेश जी का आरती भजन आप सुनेंगे। सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, बस इसी भजन के साथ पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत हो तुम। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई 8:09 वैदित हो चुका है, 9:08 स्टूडियो टाइट हो चुका है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आमिर जमाल की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। एक फिल्म जो 2003 में रिलीज किया गया, फिल्म का नाम है मर्डर। आमिर जमाल प्रोग्राम में।

0: फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश हुआ है, आमिर जमाल कहो ना कहो। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, धूप ही धूप का मौसम है और बहुत सी सुनने वाले प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। सभी को वेलकम जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।
1: Thuis, op het werk of onderweg, de beste muziek hoor je hier op jouw radio SBS.
0: फिल्म नाम गुंजाएगा, एक फिल्म जो 2004 में रिलीज किया गया है। अनुराधा पोटवाल, अनुदित नारायण

रेडियो SBS के जरिए अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की आवाज में एक गाना पेश की गई। फिल्म का नाम नाम गूंजाएगा, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुन वालो, खबर आप सुनते हैं कि 6 तारीख सितंबर आफास लाइफ आमस्टरडम शहर के अंदर में कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। बहुत से लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं iStrapTickets.com वेबसाइट के जरिए, और इन दिनों कुछ टिकट जो बाकी रह गया है काफी जोर तोड़ से उसी वेबसाइट के जरिए बस लोग खरीद रहे हैं। सुनने वालों, बस खरीद रहे हैं, जल्द से जल्द अपना टिकट आप खरीदिए। एक जबरदस्त शो, एक जबरदस्त कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का, और वो भी एक बड़ी ही खूबसूरत थिएटर में, आफास लाइफ थिएटर में ये कॉन्सर्ट पेश किया जाएगी। हजारों हजारों लोग अपना टिकट को खरीद चुके हैं और तैयार है एक बड़ी ही खूबसूरत शो देखने के लिए। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल का उन दिनों की गाने बस आपके लिए पेश किया जाएगी। कुमार सानू और अनुराधा पोटवल उन दिनों का कुछ गाने बस पेश करने वाले हैं, और मुझे मालूम है आप बड़ी एंजॉय करेंगे।

कोर्ट ओपन, हम 6:30 और शो शुरू होगा ठीक 7 बजे। टिकट अपना जो है जल्द से जल्द आप खरीदिए, iStreamTickets.com वेबसाइट पर आप जाकर टिकट को खरीद सकते हैं। कल और खानी साठोड़ जो है इसी शो का खबर किया है कि इन दिनों टिकट काफी जोर तोड़ से बिक रहा है और वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि कितना टिकट बिक चुका है और कितनी जोर तोड़ से बाकी एक टिकट बिक रहा है। चले अनुराधा पोटवाल और कुमार सानू जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, हम आपकी दिल में रहते हैं। कुमार सानू एंड अनुराधा पोटवाल लाइव कॉन्सर्ट।

और अलका जी के आवास में ये गानाबोज प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और श्रेया जी के आवास में एक गाना पेश किया जा रहा है।

खान और स्नेहा पद की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। चले हम आपको ले चलते हैं रूप कुमार राठौर की ओर, मिस्टर सिंह एंड मिसेस मेहता फिल्म का नाम है।

हमेशा हमारी सुनने वालों घर में गरम कॉफी या चाय पीते हैं, तो पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप हर एक को बस स्वागत किया जा रहा है गर्म गर्म कॉफी चाय के साथ। तो यहां से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पहला गाना प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा

9:05 व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त आने वाली शनिवार इंडिया भारत देश का आजादी का दिन ऑन अ फंक्शनल गेट्स डॉ

मधुर प्रिय और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई एक फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और विजयंती माला ने काम किया, गंगा जमुना फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। 1961 का फिल्म नेहंतीन होंदर इन सस्त का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले शमशाद बेगम की ओर।

रेडियो SBS की जरिए पुरानी फिल्म बॉर्डर इंडिया, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार फिल्म राम और श्याम की ओर, मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में।

लत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में। बस पेश किया जा रहा है जरूर और जरूर सुनते ही रहना फिल्म लव इन टोक्यो। उसी फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना लाया गया है, मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो। लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी लव इन टोक्यो।

लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शेड्यूल ट्रैक से हॉलैंड से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश और लता मंगेशकर अब

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले फिल्म नागिन की ओर। स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, ओ जिंदगी के देने वाले।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बजता है। इसकी गई पुरानी फिल्म नागिन का गीत अभी आपने सुना। रेडियो SBS की सीरीज आज की ये प्रोग्राम में ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में पेश हुआ है। महेंद्र कपूर और आशा प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना

महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। गुमराह फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में जो पेश की गई है। अब की बार हम आपको ले चलेंगे किशोर और लता मंगेशकर की ओर। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म कभी कभी, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की ओर। फिल्म का नाम दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में दुल्हा दुल्हन फिल्म का नाम चले अब की बार मन्ना डे की ओर और मन्ना डे

0: बनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो
0: कन्या उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले।

ये गाना बस पेश की गई पुरानी फिल्म खानदान, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अगली बार द मैन विद अ गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है किनारे किनारे।

द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम किनारे किनारे। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

श्रोभित है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये खास गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

0: रेडियो एस बी एस की सर, ये पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का गीत पेश की गई। चले तलत महमूद और आशा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: जब दिले नादान का प्रीमियर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई, मुलाकात वैसे होती रहती थी आगे पीछे, तो हमने ये शायद जरूर कहा हो कि तलत जी आप इतना अच्छा गाते हैं, क्यों नहीं आप अपना पूरा वक्त इसी टैलेंट में शायद लगाएं तो हमारे लिए अच्छा हुआ, कल हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। और वही हुआ कि आगे चलकर जब मैंने अपनी पहली पिक्चरें 1952-53 में काम किया तो तलत महमूद साहब ने मेरे प्लेबैक दिया था लैला मजनू में, ठोकर में, और एक समझे के दिल की तमन्ना पूरी।

रेडियो SBS के जरिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio sbs.com

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

रहे हैं हल्का जी की आवाज में। ये गाना बुजपाज की प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनवालो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। आपकी तमाम फरमाइशें, तमाम खबरें जो है सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। अनुराधा पोटवाल एन कुमार

Sanu Jeki Abbas Mim. Sudah lalu Radio SBS ke website radiosbs.nl usi website ki zariye apna mobile telefon tablet iPad computer ki zariye hamara program ko aap sun sakte hain aur sabhi internet radio ki zariye aur sunne walon bas hamesha rozana Radio SBS ka program ko follow kar rahe hain अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में ये प्रोग्राम जो आप सभी के लिए हमेशा पेश किया जा रहा है हमारा फुल डिजिटल स्टूडियो से।

रेडियो SBS के जरिए जावेद अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपके बार जो पेश किया जा रहा है

खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं, तो चले प्रोग्राम में आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है अलका एंड उदित नारायण की आवाज में।

ये प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की सीरीज क्षेत्र तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का, और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। बाबू सुप्रियो प्रोग्राम में

0: काबुल सुब्रियो की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर।

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए अरिजीत सिंह के आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना। लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चल

और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनवालो रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शेरू तरफ से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर एक गाना जो कुमार सानू के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

कुमार सानू जी की आवाज में दानव उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनवाल की सेवा में। सुनवाल हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60। सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनवल की सेवा में। एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट में। इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में होगा

है अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, सभी काम काज किया जा रहा है। आप सभी का हर एक काम सस्ती दामों में बस किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565566।

सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सितारों का सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अभिजीत और खासतौर पर अलका जी की आवाज में। इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का नाम है।

पेश की गए अभिजीत और अलका जी की आवाज में खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई फिल्म का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए आज की प्रोग्राम में जावेद अली और श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। खूबसूरत नख में आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11। इसी तार के नंबर पर बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। मोहम्मद इरफान और साथियों की आवाज में ये गाना।

जाने भी दे गाना बस प्रोग्राम में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है जाने भी दे गाना जो प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl

अलग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। शान और साथियों की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शान और साथियों के आवास में प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे बस पेश किया जा रहा है कुमार सानू एंड साधना सरगम, इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म का नाम।

सरगम की आवाज में खूबसूरत सा प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म खराम इश्क में जीना इश्क में मरना। तो चले अब की बार सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

बीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले महेंद्र कपूर और आशा जी।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले अब की बार मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं पुरानी नगमे रेडियो SBS की जरिए जो पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। मोहम्मद रफी के बाद चले किशोर कुमार की ओर।

किशोर कुमार, किशोर कुमार के आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। असरों में थे ये खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज की इस पुरानी नगमे

कैनबस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60। चले प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश और लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है कुछ ऐसे बंधन होते हैं।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ ऐसे बंधन होते हैं। सुनवालू रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

0: पर ये दिल निकल पड़े।
1: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है

मुकेश और लता जी के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना प्रोग्राम में होगा मुकेश लता और मोहम्मद रफी के आवाज में। मुकेश लता एंड मोहम्मद रफी के आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई रमैया वस्तावैया। चलिए गाना किशोर और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।
1: मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी।
0: मुकेश लता एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई रमैया वस्तावैया। चलिए गाना किशोर और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।
1: मैं तेरा हस्बैंड तू मेरी वाइफ, जो मैं कहूँ तू करेगी। फिर आ जरा पास।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट भी इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए एक गाना लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत है जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये पुरानी फिल्म का गीत आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: रावण लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा
2: इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वॉज आयर द फिल्म सत्य पे सत्ता फान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkel Her via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

Hi, क्या थे वो दिन? बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामने में श्रद्धा कपूर, दिल्ली दिस गजोंद और तुषार जोशी. गजोंद और अलका याचिनी कम तो फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर. द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कौन क्या हुआ तुझे.

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता।

रिएक्शन देना हो या एक गीत मांगना हो तो आप ज़रूर तार कर सकते हैं। हमारा तार का नंबर है 03 2 3 6 6 11।

सुनने वालों, हमारा साथ होगा 9 बजे तक और प्रोग्राम ऐसा होगा कि 2 घंटे आप सुनेंगे पुराने गीतों या गजलें और 1 घंटा आप सुनेंगे लोकल प्रोग्राम।

हाँ सुनो लो, आप सुन रहे रेडियो SBS का प्रोग्राम और आपको हम ले चलते हैं पहला नखमा की ओर। फिल्म का नाम है ज्यूअल थीफ और आपको सुनाएगी किशोदा।

हाँ ये दिल न होता बेचारा। किशोर डा के आवाज में सुनने वाला आपने सुना। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। म्यूजिक सजाए सचिन देव बर्मन ने। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है मिलन। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में।

आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक पर सुनने वाला हूँ। आपने सुना, फिल्म का नाम है मिलन।

0: छुप गए हैं कहां।
1: महेंद्र कपूर के आवाज में सुनने वालों, आपने सुन रहे फिल्म का नाम है आग और म्यूजिक सजाए हैं उषा।

द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी म्यूजिक सजाए कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म आमने सामने।

म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है मिलन। हाँ बोल गोरी बोल, तेरा कौन पिया।

0: द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और साथ दिया माइटी मुकेश और साथियों, फिल्म का नाम है मिलन। इस बार सुनने वालों, आप सुनिए द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी।
1: हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी
0: एन इवनिंग इन पेरिस।
1: देखो देखो देखो देखो, देखो, देखो, देखो, देखो, देखो, देखो, देखो।

जो खत तुझे तेरी याद में, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है कन्यादान। फिल्म ब्रह्मचारी और आपको सुनाएगी द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

मोहब्बत के खुदा हम हैं, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर आपने सुना फिल्म ब्रह्मचारी।

सिंगल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। फिल्म बहारों की मंजिल, आजा रे पिया। सुनो, 7 बजने में 1 मिनट बाकी है, उसका मतलब है कि आप सुनेंगे कमर्शियल ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद।

क्या होता है समझाए कोई। मदन मोहन के म्यूजिक पर सुनने वालों, आपने सुना फिल्म का नाम है एक कली मुस्काई और आपको सुनाई द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। इस बार आप सुनिए फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

मजा लूटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की। इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक।

यार भी थोड़ा तेरे बिना जीना, मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

0: में सनम हम गम तेरे
1: दिल पर हीरे
0: और दिल पर सोनिए तेरे
1: द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। फिल्म हसीना मान जाएगी।

रंग पर अपने जमाले है मेरा सुरमा बनाकर आंख में अपनी लगा ले मुझे साबुन समझकर अंग पर अपने जमाले।

0: मंदिर
1: मेरा जंगली
0: है जिसके अंदर
1: मेरा दिल एक मंदिर
0: मैं हूँ तेरा दीवाना आ आ आ
1: मदन मोहन के म्यूजिक पर सुनने वालों आपने सुना फिल्म का नाम है एक कली मुस्काई और हाँ आपको सुनाई द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। फिल्म हम साया रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले

रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले साथ दे आ रहे, साथ दे रहा है द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। मुझे मेरा प्यार दे दो, तुझे आसमां लिया है। फिल्म के नाम है हम साया। ओपेन नैयर के म्यूजिक पर ओमकार प्रसाद नैयर म्यूजिक सजाए है इस फिल्म में। फिल्म झुक गया आसमां, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर के आवाज में।

एक कली मुस्काई। मदन मोहन के म्यूजिक पर सुनने वालों और आपको सुना रहे हैं द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

0: सोचो तो जरा, जुल्फ बिखराती चली आई हो। द मैन विद द डायमंड वॉइस, मोहम्मद रफी।
1: क्या होगा, हाय
0: हाय। एक कली मुस्काई, म्यूजिक सजाई मदन मोहन ने, फिल्म हसीना मान जाएगी
1: मेरे।

0: ना याद रख दालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है

0: करूंगा।
1: मन्ना डे के वास में और साथ दे रही है रॉक एंड रोल क्विक आशा भोसले। हसीना मान जाएगी फिल्म का नाम है और म्यूजिक सजाए है कल्याण जी आनंद जी। एक बार फिर से फिल्म हमसाया।

0: जा,
1: हाँ
0: मेरी, हाँ मेरी जा, रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और साथ दिया है द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी, फिल्म मेरे हजूर। म्यूजिक सजाए शंकर।

0: यशोदा के वास्ते फिल्म का नाम है परोसन।
1: रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
2: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
3: Is daar aashiqui ka asar chhod jaunga.
4: Main Kumar Sanu aur main aa raha hu aapke shehar Amsterdam mein.
5: Main Anuradha Porwal aa rahi hu Amsterdam mein.
3: Raah mein unse mulaqat ho gayi.
4: 6th of September, unforgettable 90s.
5: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
6: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कारण बैताली के आवास में

0: वादा रहा।
1: ये वादा
0: उमर वागिद हुसैन के वास में।
1: ये वादा
0: हाँ, सुनने वालों आपने सुना, एल्बम का बोल है 15 सुपर सोल्स वॉल्यूम 5। आकाश अछैबर सिंह, आकाश अछैबर सिंह के वास में।

चंदन सा बदन आकाश अजय बरसिंह के वास में। हाँ, सुनने वाला वक्त हुआ है

तेरे हमराही संजय जोधा के वास में सुना लो ये आखिरी गीत है इस प्रोग्राम में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो SBS।

सुनने वाला, वो हमारा मुलाकात होगा बुधवार को। आप प्रोग्राम जरूर ही सुनते रहना। मैं हूँ आपका सेविका नीता, और हाँ, मुस्कुराते रहना।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।